विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगे। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देशभर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5,000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में

0: ढंग से होगा। और भारत ने कल गोवा में 7 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी ने आप भूज केंद्र से प्रस्तुत विचार बिंदु आज ने विचार प्रश्न पापा ने करिए पठन करी रहा है डॉक्टर मीरा सौरभ।

जनता की सुरक्षा हेतु चार विशाल द्वार हैं। अपन सुग्रीव, जांबवान, विभीषण आदि से मंत्रणा करके वानर सेना के चार दल बनाए गए। सैन्य दल श्री राम के चरणों में सिर नवाकर पर्वत शिखरों जैसे भीमकाय अस्त्र शस्त्र लेकर चारों दिशाओं से लंका पर चढ़ पड़ते हैं। लंका में कोहराम मच जाता है, किंतु महंत रावण ये समाचार सुनकर हंसता है। इस आक्रमण को वानरों की ढिटाई बताकर राक्षसों को आदेश देता है कि विधाता ने घर बैठे वानरों के रूप में जो भोजन भेजा है वे उसका उपभोग करें। राक्षस सेना के योद्धा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वानर सेना पर टूट पड़ते हैं। परकोटे पर भी बादलों की तरह छा जाते हैं। वाटर रैली में नफीरी, भेरी और रेल वाद्यों का निनाद गूंज उठता है।

तब राम चरित मानस गान संभाला है रहता कलाकारों होता है सुरेश वाडकर और रविंद्र साठे प्रसारण आकाशवाणी ने भूज केंद्र पर थी करवाना आवेदन।

और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों

की मुर्मू आज से तीन दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला या दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जाने वाली हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से दो हस्तियों को पद्म विभूषण, छह को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह दो दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागरिक बीमारी महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन पर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोमरी वन क्षेत्र में आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। डोमरी खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल है। भारत ने कल गोवा में साफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अभिका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बॉल के चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

छुट्टी कर रहा आगाहवन नवनियुक्त प्रमुख प्रताप केशवला जवाब तो अरवली जिले में विविध तालुका पंचायतों में प्रमुख प्रमुख सहित हद्देदारों ने भूमिका

Vibhushan, छह पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार अनायत कराया। प्रख्यात फिल्म अभिनेता स्वर्गीय परमेंद्र सिंह देओल ने कला क्षेत्र में अपना योगदान बदल मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कराया और उपरांत भारतीय महिला क्रिकेट टीम में सुकानी हरमनप्रीत कौर ने पद्मश्री से सम्मानित कराया। जारी गुजरात में लोक कलाकार धार्मिक लाल पंडा, समाज सेवक नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला, लोक संगीतकार मीर हाजी कासम, साहित्य और शिक्षण क्षेत्र में योगदान अपनारा रतिलाल बोरीसागर, कला और थिएटर क्षेत्र में योगदान बदल अरविंद वैद्य ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आतिकाल 3 दिवस राज्य में प्रवास आई रहा है। प्रवास दरमियान राज्य में विविध कार्यक्रमों में हाजरी आपसे विकास और सुरक्षा संबंधित मुद्दाओं की समीक्षा करते 28 मई अहमदाबाद खाते गृहमंत्री शहर विकास कार्य की समीक्षा करते जारी 29 मई भूज खाते गृहमंत्री अमित शाह नो कार्यक्रम योजना संवेदनशील गणतरी हरामी मेला की मुलाकात लेने सरहदी सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करते गृहमंत्री सरहद पर तैनात सुरक्षा एजेंसी बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की महिति मिलाव आंतरराष्ट्रीय सरहदी परिस्थिति अंगे उच्च अधिकारी साथ चर्चा करते। राज्य में नागरिकों ने हम व्हाट्सएप पर ऑनलाइन सेवाओं मिले

विराम से उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी में खास दिव्यांग उम्मीदवार विशेष एजुकेटर और मुख्य शिक्षक ने अलग थी जगह अनियमित रखी जिला अबड़ा लखपत में दरिया किनारे गई एजेंसी ने आखो दिवस चले सर्च ऑपरेशन की कवायत में वह सवेरे एक सैटेलाइट फोन मूवी संजय मादक पदार्थ में वो 11 पैकेट मिली आता सुरक्षा एजेंसी सतर्क बनी है। गई वह सवेरे अबड़ा तालुका सिंदोरी मोटी दरिया किनारा पर नेवल इंटेलिजेंस यूनिट स्टेट आईबी एसओजी और मरीन पुलिस द्वारा संयुक्त तपास दरमियान किनारा पर एक सिग्नल सैटेलाइट बिन वारसी हालत में मिली आयो। बीजी तरफ गई सांजे लखपत दरिया किनारे बीएसएफ ने पेट्रोलिंग पार्टी ने सघन सर्च दरमियान शंकास्पद मादक पदार्थ में 11 पैकेट मिली आया था। आईपीएल अंतिम तबक्का में आज से क्वालिफायर और एलिमिनेटर मैच नो आरंभ थाय छे। प्लेऑफ में प्रवेशेली बे टीमों गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमों वच्चे क्वालिफायर मैच रमाशे। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड खाते आज सांजे 7:30 वागे मैच नो आरंभ थशे।

0: भारतीय टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज राजस्थान में बीएसएफ ने सांचो बॉर्डर आउटपोस्ट में मुलाकात ली है, जहां तेरह सुरक्षा दलों के कर्मचारियों साथ ही बातचीत कर कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन कर बीकानेर में सरहदी विस्तार में सुरक्षा परिस्थिति की समीक्षा साथ ही सुरक्षा दलों के कर्मचारियों साथ बातचीत कर श्री शाह गईकाल रात्र राजस्थान में बीकानेर पहुंचा तो केन्द्रीय गृहमंत्री आगामी थोड़ा दिवसों में भारत में सरहदी विस्तारों की मुलाकात ले सुरक्षा संबंधित बैठक कर विश्व आरोग्य संस्था द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने युगांडा में इबोला रोग ने जाहिर आरोग्य कटौती जाहिर करी है। आ जाहरात बाद भारतीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए एयरलाइंस में एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी करी है। डीजीसीए जणाव्युं हतुं के युगांडा और कांगो साथ कनेक्टिविटी चलावती एयरलाइंस मुसाफरो ने उतरता पहला स्वघोषणा फॉर्म फरजियात फाइल करवा और एकत्रित करने की खातरी करनी जरूरी जणावी छे। जम्मू और काश्मीर में गुरमा गोंडाला रोपवे में सर्जायेली टेक्निकल खामी ने कारण 65 केबिन में फसायेला तमाम 300 प्रवासियों ने सुरक्षित रीते बचावी लेवामां अधिकारियों जणाव्युं हतुं के केबल कार में 65 केबिन में 300 थी वधु प्रवासियों फसाया हता, जेमांथी केटलाक जमीन थी लगभग 500 फूट ऊपर लटकता हता, जेना कारणे महिलाओं और बाळकों सहित प्रवासियों में गभराट फैलायो हतो। जो कि तात्कालिक धोरणे बचाव कामगीरी करी तमाम मुसाफरो ने सलामत रीते नीचे उतारी लेवाया छे। जम्मू और काश्मीर में राजौरी जिले में डोरीमल में सेना पुलिस और अर्धलश्कारी दलों की संयुक्त टीम द्वारा ऑपरेशन शेरू वैली शुरू कराया है, जिसमें विस्तार में गाढ़ जंगलों में छुपाया शंकास्पद आतंकवादियों ने शोधवा चाली रहे सर्च ऑपरेशन में चौथा दिवस सुरक्षा दलों ने गोलीबारी वच्चे आतंकवादियों ने एक ठिकाणा नाश करो। आ छुपावा स्थले खावा पीवा वस्तुओं ठंडा पीया पानी की बोटलों कपड़ा बेग पॉलिथीन कवर वगैरह मिली आया था। सुरक्षा दलों ने लोहना बाग पर मिले जो कदम आतंकवाद

0: बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: ईरान और अमेरिका मध्य चालू रहे युद्ध विराम बच्चे अमेरिकन सैन्य हॉर्मुज स्ट्रेट नजीक ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट से बोट ने निशान बना देने से बचाव में हमला पर आशे सेंट कमला प्रवक्ता हॉकिंग से जाना हो तो कई हमलावर मिसाइल लॉन्च साइट और खाना तैयार कराने प्रयास करते ईरानी बोट ने निशान बनावा लाभ होती मैंने उम्मीद हो तो कि युद्ध विराम दरमियान सैनिकों ने बचाव करते वक्त अमेरिकी दल संयम की कार्य करी रही है। ईरान राष्ट्रपति मसूद पजिस्किया देशभर में इंटरनेट सेवा फरीथी शुरू करने आदेश आप ईरानी अधिकारियों ने 87 दिवस की वधु समय में समग्र देश में लगभग संपूर्ण इंटरनेट सेवा बंद कर ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार 31 मई रोज आकाशवाणी पर प्रसारित होने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश लोगों समक्ष तमाम विचार रजू करते आ मासिक रेडियो कार्यक्रम 134वीं कड़ी हे। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालिफायर एक में गुजरात टाइटन्स सामने टकराशे। आ मैच धर्मशाला में सांजे 7:30 शुरू थे। आ मैच में विजेता टीम सीधी आईपीएल 2026 की फाइनल में रमशे जारी हारनार टीम ने क्वालिफायर बी में रमवानी बीजी तक मिलशे। आज अखबारों में मुख्य समाचार रजू करे मेरा सहयोगी निकिता शाह।
2: આજના તમામ અખબારોએ પેટ્રોલમાં ભાવ વધારાના સમાચારોને મુખ્ય હેડલાઇન બનાવી છે। ગુજરાત સમાચાર લખે છે દુમાડા બેઠા પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ રૂપિયા 100 પાર। દેવવ્રતની હેડલાઇન છે મોંઘવારીની 7.5 પેટ્રોલ 2.61 અને ડીઝલ 2.71 રૂપિયા મોંઘુ। સંદેશ લખે છે 10 દિવસ ચોથો વધારો પેટ્રોલ 100 પાર। અન્ય હેડલાઇનમાં દુઃખની વાત એનટીએ ભૂતકાળની ભૂલોમાંથી બોધપાઠ ના લીધો સુપ્રીમ। ઇઝરાયલ સાથે અબ્રાહમ રેકોર્ડમાં ઈરાન સામેલ થશે ટ્રમ્પનો દાવો જેવા સમાચારોને સ્થાન અપાયું છે।
1: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજથી સિક્કિમની 3 દિવસની મુલાકાતે વિદેશમંત્રી આજે નવી દિલ્હીમાં ક્વોડ વિદેશમંત્રીઓની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે। ગૃહમંત્રી આજે રાજસ્થાન બીએસએફની સાંચો બોર્ડર આઉટપોસ્ટની મુલાકાત લેશે। જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં

मैं अपने सिरे से सभी श्रम कार्यक्रम हलो करूं गाल एक अच्छी कार्यक्रम बाजे पर क्षेत्र बनाकर आज मैं कार्यक्रम में आर्थिक स्वतंत्रता बाहरी में जरूरी विषय पर अपनी जोशी भरी गाल बोल अठारह बीस गुजराती सुगम संगीत नो कार्यक्रम गीत सुथा बराबर नौ पद रजू कर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में प्रायोजित है एनसीईआरटी कार्यक्रम सहय आज भूज केन्द्र की प्रस्तुति रजू कर जिग्ना मेहता धारा अधिकारी कार्यक्रम में विषय रहे स्वाद और स्वास्थ्य न संगम रसोड़ीस मिनट हिंदी फिल्मी गीतों कार्यक्रम खास फौजी जवानों 40 मिनट फरी एक बार गुजराती गैर फिल्मी गीतों

কাজ ফাগে মনে করে শুনে আকাশ ফাগে আমাদের কার্যক্রম শ্রেণী 25 মিনিটে সর্বশেষ স্থানিক সমাচার শ্রেণী 30 মিনিটে युवा दोस्तों भेटन कार्यक्रम युवाणी जमा भूज केन्द्र की प्रस्तुति आज करशे छंद अंताणी और भक्ति गुजराती आज सागरशु यूथ आइकॉन सात नवे सुनते ग्राम्य विस्तार में भागनी माटे नो कार्यक्रम ग्रामीण चारो अमदावाद वडोदरा केन्द्र थी रिले कराशे रात्र 8 वगे सागर शक्षो विविध भारती मुंबई नो कार्यक्रम आकाशवाणी भूज केन्द्र पर आज हम पी प्रसारित कार्यक्रमों ने

में मालदीव को 11-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर वन में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री टोनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दौरा करेंगे

0: शर्मा आकाशवाणी समाचार गंगटोक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अभी कुछ तीन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह दो दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभाग में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रूपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रूपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे

सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोके के 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोलमल वन क्षेत्र में आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 25 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्रमोद शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन इन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कई हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।

0: फेंक कर नहीं।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौते अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का हिस्सा है। और अब खेल जगत के हलचल के साथ है मुकेश कुमार।

0: संभव है। आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कहीं लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी।
1: समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज। धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूति

पेट्रोल संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्ता ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान के चित्र में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देशभर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने

मुख्य समाचार एक बार फिर फ्रांस विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम के 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। डब्ल्यूएचओ ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारतीय सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया और

0: song.
1: तो अज्जू पाजू ये टाइम है हमने बड़ी बार एवं बने तो वही के बच्चे जुड़े मुस्कली पहुंची हुए थे तो बोले जी जो को स्वतंत्रता है इन्हें करीने आज पांजे स्टूडियो में अकड़ा आया लाट मजे जा शिक्षिका बनन जो को नक्षत्रवान ने लाट मजे जी मास्टर जी नौकरी करी अने बालुवे के अने समाज जी बाई के अने जागृति अने जीवन में अगे वधे जो घणी वक़्त की पंहिंजे टेन थी मथे पण कम करनि था अने अॼु बाई के जो
2: जरूरी है।

0: जिन थे मार मारे के बहुत बड़ी मिली है तो पांच कच्ची गएंगे तो सात तक का मिले थे तो अभी मुझे भी प्रश्न हो रही पड़ते थे तो घर में कम बच्चे आर्थिक का मजबूती लगाने जो को भाई धारे थे ना कहीं के जेल में ठीक तो मुश्किल लग गई जो थी
1: आर्थिक रीते मजबूत होने में कई कई मुसीबत मरे क्योंकि डबल शिफ्ट करनी पड़े थी सौथी बड़ी मुसीबत थी के भाई के मार जो कम पता ही घर अच्छी रसोई सफाई छोकरी की जवाबदारी पाई पड़े थी घर में जो मदद न मिले तो थकी पड़े पछले कितने विस्तार में जो रूढ़ी चुस्त वातावरण है किन्ने भाई जो कम करना निकले घर में को चौंदा समाज को चौंदो ई चंदा भाई के अग्या वधे में रोके थी धंधो चालू करेला करे पैसा खपे ई जल्दी न मिले बैंक में लोन गिना जमीन के मकान जा दस्तावेज न खपे चुनाई जे नाले अडे भागल था हुए यानी के इधर में कितना नुकसान थी तो कच्छ जी भाई हुए ई भरत काम में वो होशियारी और ई बनाए लो माल के ना बेच नू के बच्चों की कमाई नू ई जानकारी यानी के ओछी हुए थी।

0: जोने आराम पारा पेन दी वने तुझे की बीमारी जी सके दाए की बैठे थी
1: हाँ की गल तो 100% सच्ची है के पंजो दिन मिट्टी रखी सके इतने वैल्यू मारने का पा वैल्यू जपा बैठके रहती है मानती पड़ते होते हैं तो भी मुके ये थे तो का तो मेरे मैंने खड़े पठिया ये मुश्किली जो किंग तो हल हो गए ने
0: हल सी बात करो तो मुसीबत हो हल का नहीं है तो सोचे करो तो हल ई के घर में जो कुमार हूँ लेकिन ये इवस तो समझे जी जरूर आए के घर कम की जवाबदारी खाली भाई है जी ना रसोई साफ सफाई घर वाला जो मदद करे तो भाई इंसान के भी तुम तो कम दिन तो कर ही सके एक ही भाई करता जो वो घर भाई देगी था इन्हें सखी मंडल बनाएंगे तो बैंक वाले की लोन घर सरल रिटर्न ले सके ने कच्छ में हाँ ये सखी मंडल ने बैंक घर सारो रू जो खोले अने तंचो कम दिन तो करें इसको तो ये नहीं लग करें तो उन्हें खाई जो सरकारी जो अलग अलग योजनाओं की इन जो लाभ के लिए मैं बुखिया ना बताऊँ कहते जिनके पीएम मुद्रा योजना है जिन्हें बैंक के धंधो करे ना करे गारंटी बगैर लोन मिले थी वही लक्षदी दीदी योजना है की योजना में भाई इनकी ट्रेनिंग अने पैसा जिन्हें दर्द अने लक्षदी बनाए जी कोशिश करे मिया जी थी वो सारी वही योजना हुई जो हमारे आजकल डिजिटल युग जो जमाना हुआ जो हमारे जो भाई मोबाइल थी व्हाट्सअप इंस्टाग्राम के फेसबुक पर जब भारत काम के हस्तकला जब फोटो भेजे तो सीधे घर के निकल नहीं सके एने बच्चे के अजय के पैसा न बिना खाने जो भाई जो नफो पर बढ़ी सके जो कच्छ में अमुक संस्था में जो को भाई के सक्षम बने ला करे सतत प्रयत्न से ले एनी साथ में जोड़ा इन तो कम फायदा ले सके जो भाई के नवी डिजाइन बनाएंगे अन्य बाजार में माल की बेचा जे सिखाएंगे जो जो सौ की महत्व जो के भाई के पंचे स्वास्थ्य जी संभाल रखी दी जाए जो पंच स्वस्थ होगा तो जो अगर कम काज करी सब गए समय सा खादो की तो कोई तो आराम की मेरे जरूरी है अने अंत तो चौली से के जो वायु मजबूत हुई हो तो कच्छ मजबूत थी हो इतने थे सके तो वधू न वधू पांची भाई अने बहने के मदद करनी अने नीचे अध्यावधि लगे सतत प्रोत्साहित करनी की पांची नैतिक फर्ज हो जाए
1: हाँ बहुत

0: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्य देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन जी ने सुझाव भेजा है। लिखते हैं,
1: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली देवी, पूजा, पुष्कर, जिहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: और इसके साथ साथ यह संदेश मिला है कसौक जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
0: अजय जी

मिश्री नमस्कार। आज उन कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर पेड़ निर्धारक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम में संवाद के माध्यम से उनके कार्यों उपलब्धि

0: से डॉट इन पर भी आप अपना संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप टेक्स इंस्टा फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CITNCT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पॉइंट श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: Children, have you ever visited a zoo?
3: A zoo?
2: Yes, a zoo.
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in the zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey.
2: Birds of different kinds.
3: Very nice.
2: Camel.
3: Giraffe.
2: As a child like you, who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem, and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see
3: the polar bear and seals
2: enjoy.

0: Christmas, Kangaroo, Beanie. Well, friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: सुनाइए संगीत का कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश के स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
3: वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरा।

0: se ha puesto grande. Por dani kilátmi kosi se klifti. Já chybu ti dají oči.
1: Přiznám se. Hm, jak si guzáriš karmi na jeho?
0: Já zrůr. Pojďme tě. Kamátky těl mu tak posekte.
1: Vejčí neznám se. Hm,
0: já firmají.
1: Firengi hukumat ki barbarita aur sazishe ek bar phir bad rahi hai.
0: Hm.
1: Ghadar mein mili nakami ke baad ab wo hame aapas mein lana rahi hai.
0: Haji.
1: Isliye hame milkar kaam karna hoga. ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
0: राजू जी, हम भी ऐसे ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
1: जी।
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस्तेमाल में रहे। हमारे वजीर सोनार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
2: जो हुक्म मिल गया था हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।

तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बस्तर ही दूसरे बस्तर का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर साला जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा था।

0: फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनके सैनिक मर जाने के बारे में पूछे गए, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मौत की भूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों लगवानी पड़े।
1: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटास टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
2: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आराम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से क्या कर तुम्हें फरमान करने दूंगा।
3: अप्पा ये नहीं हो सकता।
2: देखो देखो तुम्हें हमारे दोस्ती की कसम, बात तुम्हारी हो मैं तुम्हें पूछ नहीं होने दूंगा।
3: ये नामुमकिन है। तुम्हें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते।

0: मंजूर है। क्या टाइम नहीं मांगा गया? देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है कि नहीं? ये सजा अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय टेप से बांध कर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं करेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं। जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
1: काला पानी की सजा?
0: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहाँ अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली। काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूँ मैं। भारत माता बहादुर बेटा हूँ।

0: किसी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
1: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही पर समाप्त होता है। तो आपके मित्र अजीत
2: और वनेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: हमारा आज सुन रहा था प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम में प्रायोजित होता NCERT, प्रसारण करें आकाशवाणी में।

आकाशवाणी भोज प्रस्तुत है मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम में 3 दिवस की मुलाकात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रविवार 31 मई ना रोज आकाशवाणी पर प्रसारित करना मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश समक्ष विचार रजू कर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में अध्यक्षता करते। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज राजस्थान बीएसएफ में सांचो बॉर्डर पर आउटपोस्ट में मुलाकात लेंगे। केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ओटावा में कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात करी। जम्मू और कश्मीर में गुलमर्ग रोपवे केबल कार में फसायेला 300 प्रवासियों ने बचा लेवाया। विश्व आरोग्य संस्था द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला रोग ने जाहिर आरोग्य कटौती जाहिर कराई। राज्य में वर्क फ्रॉम होम में अमल माटे गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक योजाई। राज्य में इंदौर में पूर्ता प्रमाण में जत्थो उपलब्ध अफवाहों से दूर रहना सरकार ने नागरिकों ने अपील। इंदौर बचावा ने प्रधानमंत्री ने अपील बाद सूरत में ई वाहनों की खरीदी में वधारो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पत्र लिखी है आगामी 21 जून योजना नीट यूजी 2024 पुनः परीक्षा में सलामत सुरक्षित और सफल संचालन करने का अनुरोध करो। राज्य में नागरिकों ने हमें फरियाद निवारण सहित आवक जाति ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों राशन कार्ड महसूल रिकॉर्ड सत्तावार सौगंधनामा जेवी 20 जेटली सरकारी सेवाओं व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिलशे। इबोला ने केसों ने पगले राज्य सरकार सतर्क हॉस्पिटलों में अनायदी व्यवस्था उभी कराई। जिले में अबड़ासा और लखपत में दरिया किनारे गई कल एजेंसियों ने आखो दिवस चाली सर्च ऑपरेशन दरमियान वहली सवार एक सेटेलाइट फोन और मोड़ी सांझे मादक पदार्थ में वो 11 पैकेट मिली आता सुरक्षा एजेंसी सतर्क बनी। राज्य में आगामी 31 मई सुधी हवामान मुख्यत्व शुष्क रहने शक्यता। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालिफायर वन में गुजरात टाइटन्स सामने टकराशे जहां आती काले सनराइजर्स हैदराबाद एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स सामने टकराशे। हवे पछीना मुख्य समाचार सांजे 5:10 अपाशे।

0: सिर्फ पहला पड़ा।
1: इन लोगों ने असल जुड़ा है तो देखते म्यूजिक में काफी वायदे किए हैं क्योंकि सरकारी बड़ी थाने में संपर्क कर लो। गुजरात सरकार ने उपक्रम GSDN द्वारा जनहित में आई मेरे में आप सुरक्षा सूचना में पालन करो अन्य यूथ ही बचो।
0: लेकिन यूथ ही बचो आप दोपहर नए थे 4 बजे सुबह बाहर निकलो नहीं और सुथरा सफेद कारपेट ही ढको तथा खुला कपड़ा पहनो। बालकों सदर वस्त्रियों तड़का में विशेष काळजी लेनी। पुष्ट बाल पानी लींबू पानी और 6 किलो पहला पीना।
1: अरे यू लोगों ने असल जाना है तो प्राथमिक म्यूजिक में प्राथमिक आरोग्य केंद्र तथा सरकारी बड़ी थाना में संपर्क कर लो। गुजरात सरकार ने उपक्रम GSDN द्वारा जनहित में।
2: कार्यक्रम मनोरंजन और आकाशवाणी भूज केन्द्र पर साछ कार्यक्रम में हम पीछे गीत फिल्म तारा मे सा कलाकार लता।

शिक्षण कार्यक्रमको अनि अग्रता भएको कुटुम्बले मेरो पात्र अनिलबाटै सम्बन्धित जिल्ला निवासी अधिक कलेक्टरसँग फरियाद गरिसकेका छ। अब त वहाँ भाषण मोबाइल एपद्वारा भाषण प्रयोगमा यति विविध माहिती तपाईँ बोलबाला अङ्ग्रेजमा जत्रा रसिद मेलवी सकाउ छ त्यति फरियाद पनि गर्न सकाउ छ। अनि जो अधिकारीलाई निर्णयती सन्तोष नपाए त गुजरात राज्य अन्न आयोग गान्धी नगरले सिधी अर्जीको अपिल गरी न्याय मेल्न सकाउ छु। फोन नम्बर 0709 232 58 409। शुरू तभी जानो कि पीएम पोषण योजना अंतर्गत प्राथमिक शाला में 6 से 14 वर्ष के बालकों ने मिलता आहार बनाते संबंधित जिला में निवासी अधिक कलेक्टर श्री ने हिमाच आंगनबाड़ी केंद्र में 6 महीने से 6 वर्ष सुधी में बालकों ने सगर्भा महिलाओं ने तथा भर्तृ माताओं ने मिलता आहार बनाते कोई फरियाद हो तो संबंधित जिला पंचायत में फरियाद बनाने अधिकारी श्री ने अर्जी के फरियाद कर सकते हैं। जो अधिकारियों ने निर्णय से संतोष नहीं पाए तो गुजरात राज्य अन्न आयोग गांधीनगर में सीधी अर्जी के अपील करी न्याय मेल सको। फोन नंबर 0709 232 58 409।

0: नमस्कार
1: जी, नमस्कार सर।
0: हाँ जी, कौन बोलो? बोलो महेश भाई, शू करो छो?
1: जी जी

0: ચોક્કસ સંભળાવીએ આપને આપની પસંદગીનું ગીત.
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसे.

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, या पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, मैं सोचता हूं ये कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मेरा ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहे और सहे हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिन में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
1: हाँ जी बोलो। नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार। कैसे
1: मजे में एकदम। तुम्हें कौन बोलो? छो बोलो बोलो। खंडात में शो करो छो? बराबर छे। हाँ एक नाम संगीत छे। तुम्हें कितनी बार खाओ छो महीना में? अच्छा अच्छा। हलवा संग प्रोसेस खबर छे केवी रीते बने छे?

आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा रजू करिए छे बिन फिल्मी गीतो प्रारंभ में सांभ राजेश्वरी सचदेव ने गीत से नक्श लेल पूरी।

0: बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, हम कहीं विरासत की तो मीडिया में भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार नीलाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम में आपके सामने साथ में सरगम में स्वर में रमेश पारखूंगी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ हिस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
1: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भूज बदरनाथ आया हम थोड़ी में दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार सांभो त्यारबाद एक वगे ने 5 मिनट अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री टॉनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पैरेट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के

में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमरीका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के

0: Sanders, as they intend to do.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज और जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन सोच नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,300

विभाजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: चार विदेश मंत्रियों ने बैठक पूर्ण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम में 3 दिवस की मुलाकात के गंगटोक पहुंचे, विविध कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांचू में सरहदी कामगारों ने माथागत विकास मेटे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 में आरंभ कराया गया। तमिलनाडु में AIADMK ने 3 धारासभ्यों ने राजीनामा आपा। दक्षिण ईरान में अमेरिकन दलों द्वारा करवाया गया हमला बाद अमेरिका और ईरान बच्चे तनाव बुधो। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटन्स से टकराशे। आकाशवाणी पर समाचार पूरा था, हमें पची 11:30 प्रादेशिक समाचार सांभी शकशो।
1: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भूज।

नमस्कार श्रोताओं, जय भारती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं मेरे हुजूर फिल्म में मोहम्मद रफी को। गीत हसन जयपुरी, संगीत शंकर जयकिशन।

0: आकाशवाणी का अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भूज केंद्र से आप सुन रहे हैं फौजी जवानों के लिए हमारा कार्यक्रम जय भारती।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ हिस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मध्याचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: हम साया इस फिल्म में सुनिए मोहम्मद रफी को, गीत तो शगन रिजवी, संगीत ओपी नैयर।

हसीना मान जाएगी। इस वक्त सुनिए महमूद रफी को, गीत अख्तर रुमानी, संगीत कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रमों के लिए हमारा कार्यक्रम जय भारती। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भुज केन्द्र से प्रसारित किया गया। दोपहर के 2:15 होने को है। लीजिए सुनिए दिल्ली से हिंदी में दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु

0: होतेगी ने होजमुई जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औदास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की

0: विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अलप्पुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोरमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: संभलिया ऐश्वर्या मजुमदार ने गीत है जयंत पलानू।

0: जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में

0: extinguish as they intend to do.
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
0: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी बल दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमेशा प्रभावित राष्ट्र

0: प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, किसान क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे की प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चर्चा क्वाड सहयोग के चार मुख्य स्तंभों पर केंद्रित रही, जिनमें समुद्री और सीमा पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियां, मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद रोधी प्रयास क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विदेश मंत्री ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि बल ने न केवल सीमा की दृढ़ता से रक्षा की बल्कि सीमावर्ती जिलों के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। उन्होंने सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलकर एक चार स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया। श्री शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ग्रिड की मदद से सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकेगा। इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपना पन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है, उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार के उन पहलों का जिक्र किया है जिनसे देश भर के लोगों को विशेष रूप से नारी शक्ति, युवाओं और किसानों को लाभ पहुंचा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पहली क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્રનું પ્રસારણ આપ સાંભળી રહ્યા છો। હવે એક નજર આજે હવે પછી પ્રસારિત થનારા કાર્યક્રમ।
3: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jayashankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity.
4: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic

की बात है जन जन की, सभी के कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ खुद ऐसी कहानी, कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह

0: बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: સાંભળીએ રિચાર્જ શર્માના કંઠમાં હંગામા ફિલ્મ ગીત।

0: Belgian hitai, Belgian sukai. आज जून 1936 थी आपने सेवामां रहेली आकाशवाणी 9 वर्ष थी समाज में सचोट माहिती शिक्षण अने सात्विक मनोरंजन पूरु पाड़ी रही छे। आज समग्र भारत में लगभग 541 स्टेशनों संचालन करी रही छे। आकाशवाणी ना सूत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ने साकार करता आज आकाशवाणी भारत में 92% भौगोलिक विस्तार में 99% जटिल वस्ती में आवरेल छे। देश ने ग्रामीण शहरी और सरहदी विस्तारों में 23 भाषाओं 182 जटिल बोलियों द्वारा राष्ट्रीय और प्रादेशिक कार्यक्रमों पहुंचाई रही छे। आधुनिक समय में मान आपने डीटीएच मोबाइल एप्स और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर 24 कलाक अपनी सेवा में हाजिर रहती भारतीय वारसो और संस्कृति नु जतन करती आकाशवाणी ने आज 9 वर्षे लाख लाख अभिनंदन।
1: कार्यक्रम ना अंत में संभाळशो मोक्ष फिल्म गीत। कलाकारों छे सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति।

असां अञा करे खणी रहिया आहियूं अखे अखाई जा महत्व जा समाचार अॼु जे अंक साथे अमैया अशरफ मोटवानी मेहूबेराणी परेश मारू नमस्कार श्रोता मित्र परेश भाग कच्छ जा कुरु हवाड़ी अॼु जे अंक में थोरो ख़ासि आहे पहले इन विषय श्रोता खे ॻाल्हि करियो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 29 मई जो कच्छ जी मुलाकात ॾींदा कच्छ में जिला पंचायत तालुका पंचायत में प्रमुख उप प्रमुख सहित के होदेदार जी करे में आवई वर्णी पीएम किसान योजना जे नियम में करे में आयो फेरफार 30 जून सुधी में फेस ऑथेंटिकेशन नहीं करायो तो खेडूत जो हफ्तो अटकी सके तो कश्ती दिल्ली के झुंड भी दैनिक ट्रेन सेवा जो थियो प्रारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी दिन में देश के सरहदी विस्तार जे प्रवास करी ने सुरक्षा संबंधित बैठक योजना जिन अंतर्गत 29 मई में जो कच्छ जी पर मुलाकात गिंदा अमित शाह बीएसएफ सीमा चौकी अने हरामी नारे जी मुलाकात गिनी वेला आई सरहद पे तैनात

नवंबर 2020 में सीमा सुरक्षा बल जे रायसिंह डे परेड जे राष्ट्रीय कार्यक्रम वक्त भुज आयावा अने रात्रि रोकाण थयो। इन पहला ऑगस्ट 2023 में रण सागर सीमा वॉच टावर जो कोटेश्वर के उद्घाटन थयो अने मूलिंग प्लेस तट्टी जो अनावरण थयो। नवंबर 2020 में धोरणो में सरहदी विकास कार्यक्रम में भाग थयो।

religion this last winter time. भारत सरकार पीएम किसान योजना जे नियम में फेरफार करायो हाने तमाम लाभार्थी न करे दर वरे ई केवाईसी करे जो फर्जियात करे में आयो आए आगामी 30 जून सुधी में फेस ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी जो को पण खेडू की प्रक्रिया पूरी नहीं करे ते जो हफ्तो अटके सके तो सोना एकड़ो विशेष अहवाल

प्रवेश पाई थी। जो अधिकारियों ने निर्णय से संतोष न था तो गुजरात राज्य अन्न आयोग गांधीनगर में सीधी अर्जी की अपील करी न्याय मेरे शको छो। फोन नंबर 0709-232-5849। शू तभी जानो छो की पीएम पोषण योजना अंतर्गत प्राथमिक शाला में 6-14 वर्ष बालकों ने मिलता

0: Platform verso la prospettiva in caso di
1: पर मैं भी चौहान ने समय बाद लोक संगीत कार्यक्रम में हरी समय शु टैंजिबल चैनल ने कंठ में लोकगीतों

0: नमस्ते, ये आकाशवाणी है। हरिपुरी में खुद के मन का खबरों में रहा सबक आवाज मुख्य खबरों। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्री की बैठक की सिद्धार्थ कई। क्वाड मेयर स्टील एंड नेटवर्क शक्ति बाजार की कौरबत्ता जाहिर कई। भारत ए अमेरिका एम मेजनी पदार्थन ए दुर्लभ जमीनी अंसरन की फराम में खार खोटाई ए प्रोसेसिंग के मजबूत करने वास्ते एक अहम समझौते पे दस्तखत कया। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के सांचो सरहद चौकी जो दौरो कयो। सऊदी अरब में लखी जायरीन अज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में अज शाम जो गुजरात टाइटन्स जो मुकाबलो मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। हाँ, खबरों तफसीलवार बुधना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की सरबराई में क्वाड विदेश मंत्री की बैठक अज नई दिल्ली में मुंतजिम कई गई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी ए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में हिस्सो वरतो। क्वाड मेयर स्थिर ए नेटवर्क शक्ति बाजार की कौरबत्ता जाहिर कई। मेंबर मुल्कन आलमी शक्ति बाजार में रुकावट के वक्त एक बे की शक्ति सलामती जरूरत के पूरे करने के लिए सहकार के अधिक मजबूत करने के रजामंदी जाहिर कई। बैठक बाद गडल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर चयो तो क्वाड मुल्क विच में सहकार के अधिक मजबूत किया वो।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करना तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की

0: आने वाले दिनों में चाहे वो फार्मिंग जो यही हो ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार हो किसान क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: अगुणे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अगुणे प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़

0: किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान पायल लिखे हुआ है। यह मौके पर श्री नायडू ने कहा कि सदन के खासकर उभरंदर राजनेताओं के ये किताब जरूर पलंग गुर्जे। श्री देव ने कहा कि ये किताब एक आम निवासी सियासी जीवनी को नहीं बल्कि ये लिखा रही थी तो श्री मोदी और श्री शिवराज अवारा जी जन दलाई वास्ते किए मिली करे कार्य करे। इन मौके पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गड उनके दहाकन के तजुर्बे पे ये किताब आधारित है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य अरसे का 12 साल मुकम्मल कराने पर खेल मेरा मुबारक को बनी।
1: आज 26 मई है, यही ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सबको उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते को देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: आईपीएल क्रिकेट में भी पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो मुकाबला गुजरात टाइटंस जीतेंगे। मैच धर्मशाला में आज शाम 7:30 बजे का शुरू होंगे। इन मुकाबले की सौभारी टीम सिद्ध आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेंगे जबकि शिकस्त मिलल टीम के प्री क्वालिफायर मुकाबले में एक अन्य वधी का मौका मिलेंगे। बीजू जनता दल बीजेडी जो अगुओ राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल थियो आहे। आखिर में मुख्य खबरों एक बार बेर बदला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्री की बैठक की सिद्धांत कई। क्वाड मेरा स्थिर और महफूज शक्ति बाजार की कोलबत्ता जाहिर कई। भारत में अमेरिका एम नकली पदार्थों और दुर्लभ जमीनी अंसरण की सुविधा में खार खोटल और प्रोसेसिंग के मजबूत करण का एक अहम समझौते पर दस्तखत कया। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के सांची सरहद चौकी जो दौरो कर सऊदी अरब में लखी जारीन अज हज की मुख्य रस्म अदा कर गया है। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला

five ways in which I can thank my Munish Sharma. सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसंख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। श्री

स्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवान

0: करने का महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
1: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पर आतंकवाद,

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के चार प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी और अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट

विद्यार्थियों पर उभारी रही है। आगामी समय में प्रतिनिधित्व जारे कृषि वधु स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित और पर्यावरण मित्र बन से तरह ड्रोन तेना मुख्य भूमिका भजव से ये निश्चित है। तो हमें गुजरात सरकार की आगामी योजनाओं विषय बात करता पहला फरी सुंदर मजा गुजराती गीत सांभिए फरी भेगा थी।

0: आकाशवाणी समाचार रीता दवे वांचे छे। सौप्रथम मुख्य समाचार। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह नरेन्द्र मोदी सरकार ने 12 वर्ष पूर्ण थवाना अवसर ने देशनी सभ्यता और विकास यात्रा में परिवर्तन लावनारो तबक्को गणाव्यो। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहे कहू ड्रोन द्वारा कैफी द्रव्य और शस्त्रों की दानचोरी ने अटकाववा आगामी 6 महीना में ड्रोन विरोधी प्रणाली स्थापित कराशे। घुसणखोरी और अन्य कारणसर वस्ती विषयक परिवर्तन नियम पड़कारों सामनो करवा सरकारे एक उच्च स्तरीय समिति की रचना करी। क्वाड देश विदेश मंत्रीए सरहद पार आतंकवाद की आकरी टीका करी। राजद्वारी सभ्य सहित विदेशी नागरिकों ने शक्य तेटली वहली तके युक्रेन नु पाटनगर छोड़वा रशियाए अपील करी। सिंगापुर ओपन बेडमिंटन स्पर्धा भारतीय खिलाड़ियों बीजे राउंड में पहुंचा। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आज नरेन्द्र मोदी सरकार 12 वर्ष पूर्ण थवाना अवसर ने भारत की सभ्यता और विकास यात्रा में परिवर्तन लावनारो तबक्को गणाव्यो। सोशल मीडिया संदेश में कहू कि 26 मई 2014 ना रोज श्री मोदी प्रधानमंत्री तरीके शपथ लीधा बाद देश वहीवट विचार नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक परिवर्तन आयु। श्री सिंह वधु में कहू कि माळखाकीय सुविधा विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लई एक सशक्त राष्ट्रीय सुरक्षा माळखा सुधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में देशे नोंधपात्र प्रगति करी छे। भारत की विकास यात्रा प्रत्ये श्री मोदी की प्रतिबद्धता उल्लेख करता श्री सिंह कहू कि राष्ट्र प्रत्ये अतूट संकल्प और निस्वार्थ समर्पण लाखों लोगों ने प्रेरणा आपत रह। कहू सौनो साथ सौनो विकास सौनो विश्वास मंत्र दरेक स्तर पर शासन और नीति निर्माण में देखाय जेनाथी भारत पहला मजबूत गौरवशाली और आत्मविश्वासी बन्यू छे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहे कहू कि सरकार ड्रोन द्वारा कैफी द्रव्य और शस्त्रों की दानचोरी ने अटकाववा आगामी 6 महीना में ड्रोन विरोधी प्रणाली स्थापित करशे। राजस्थान में बीकानेर जिले में सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट पर प्रहरी परिषद में सरहद सुरक्षा दल बीएसएफ कर्मचारियों ने संबोधता श्री शाहे कहू कि सरहद पार उद्भवता जोखमों ने साथ साथ आवा जोखमों ने मदद करता आंतरिक तत्वों पर ध्यान आपवू जोईए। उम्र के दानचोरी में संडोवायेला लोगों सामे कड़क कार्यवाही करवी जोईए। श्री शाहे जणाव्युं कि व्यापक सरहद सुरक्षा सुनिश्चित करवा बीएसएफ सशस्त्र दलों सैनिक वहीवट और जागृत नागरिकों ने जोड़ता बहुस्तरीय 4 पॉइंट सुरक्षा ग्रीड जरूरी छे।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में यही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन उसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट

हवामहल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयों का दूसरा भाग। निर्देशन दीनानाथ का है।

0: दोनों को कविता के ज्ञान दिन की बहुत बहुत बधाई।
1: अरे भाई ये बधाई बधाई तो मेरी उसी को जाकर दो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है।
2: बहुत नाराज है तुमसे, सब लोग तो कभी से आ चुके हैं और तुम इतना लेट आए हो। वो बिल्कुल बैठी है
0: आपने के नतीजे आंटी, देखिए अभी जाकर उसका मुँह बिल्कुल ठीक ले लेता हूँ।
2: पिछले महीने है डाइनिंग रूम में शुरू करने के
0: नतीजे मैं सब अभी ठीक ले लेता हूँ।
2: बहुत देखो ना, सिर्फ 4 साल मैंने सर्विस करते हुए और अपनी कार खरीद ली है। अपनी फर्म की लोकल ब्रांच में नंबर 2 है, 2 साल तक नंबर 1 हो जाएगा। इन्हें बता रही थी सब मिलाकर 1400 मिलती है, वो अब साल दो साल जाते।
1: अरे भाई मैं उसकी नेचर की बात कर रहा
2: हूँ। अच्छा है अच्छा है, हाथ में प्रेजेंट का डिब्बा बहुत बड़ा था, 20 साल का डिब्बे लगा हुआ था। ये तो 20 साल वाले तो बहुत ही चोर है, हर चीज के डिब्बे तुम्हें दाम लगाते हैं। मगर ये जरूर है जो वैरायटियों के यहाँ मिलती है ना, आप अखबार पढ़ रही हैं क्या?
1: देख रहा हूँ।
2: लकी गर्ल।

यादों की परछाइयां। अभी आपने सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का दूसरा भाग सुना, निर्देशन दीनानाथ का। इस नाटक का तीसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे कल इसी समय हवा महल कार्यक्रम में।

0: वजह से उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: तो सुनने में भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ

अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री नितिन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ

श्रोतृमय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रीति शर्मा के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले गाने में लिया फिल्म यू टर्न से, इसे गाया है असित त्रिपाठी ने। गीत रश्मि विराग का है, संगीत आरको का।

0: जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदब के साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

रेडियो कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना। इसे गाया है अभय जोधपुरकर ने, गीत इशाद कामिल का है, संगीत अजय अतुल का।

0: छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ भारती पर।
1: अब चितलो कार्यक्रम समाप्त होता है। यह विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रूपये से बढ़ाकर 1,580 रूपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। और एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: आज एक किसान में एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये कुछ पेठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश कहीं नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वही आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्रा के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमें करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड। बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य
5: द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्री ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विस्तार पर चर्चा हुई। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in।

0: कैप्टन पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बायपास के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4,000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: थाउजेंड सेंसर्स यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 63 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाते हैं, जंप कर जाते हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को माँ हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी माँ हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में

मराठी फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना। प्यारे प्यारे

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माय नेम इज खान।

जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो

बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो न हो, दोस्ताना, मेकअप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं दिया, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया।

जहां यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजात खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी।

फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वा बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

शहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मा

लिए देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

सम्मान। ये कार्यक्रम आज के नृत्य निर्माता निर्देशक करण जौहर पर शोर आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

अनुसार दर्द का दूसरा नाम है। उस दर्द का एहसास भी भला लगता है। प्यार के लम्हे बड़े छोटे होते हैं। उन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने को जी चाहता है। उन लम्हों को जीना चाहते हैं हम, कुछ यूं कि ये मुलाकात फिर हो न हो। चलो इन्हें संजो ले अपनी जिंदगी के दामन में, कुछ यूं कि छोटी सी जिंदगी में कई सदियों का प्यार समा जाए।

सा साथ, भला सा साथ, भला सा एहसास, भली सी आवाज, भली सी सूरत, बिना किसे नहीं भली लगती है। मिलता है ऐसा सरूना सा साथ तो जीवन की बगिया महक उठती है। हर शाख की कोपले हरी हो उठती है, मन में खिल उठते हैं रंग बिरंगे फूल।

रात भर झरती रही चांदनी आसमान से, रात भर सितारे खेलते रहे अटखेलियां चांद से, रात भर हवा गाती रही उदास गीत, पत्तियां सरसराती रही और काना फूसी करती रही पेड़ों से, रात भर जुगनू भटकते रहे किसी की खोज में, रात भर यादों के दिए झिलमिलाते रहे मन के आंगन में, रात भर इंतजार करते रहे किसी के आने का।

जादू के रंग से सजाए हैं ख्वाब, मालूम है कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। कुछ ख्वाबों का ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। ये ऐसे ख्वाब हैं जिन्हें हम देखते हैं और अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं। ये ख्वाब सिर्फ इंतजार होते हैं।

हमारी जिंदगी का आईना होती है। उसमें नजर आते हैं बीते समय, यादों का एक सिरा पकड़ते हैं कि बस चलचित्र की तरह जमाने भर की बातें हमारी आंखों के सामने ठहर जाती हैं। कई बार यादों का दामन थाम हम घंटों बैठे रहते हैं, खुद से गुफ्तगू करते भूल जाते हैं खुद को। वक्त का कौन सा सिरा आज है यही नहीं याद रहता, गुजरा जमाना है या है हकीकत। कुछ यादें हमें इतनी अजीज होती हैं कि उन्हें हम हर पल जीना चाहते हैं।

रात होगी, वही चांद, वही सितारे, वही आसमान, ये हवाएं, लेकिन मंजर सोना सोना सा होगा, कहीं कुछ कभी महसूस होगी, यूं लगेगा ये चांद नहीं है रोशन, मध्यम है सितारे, खामोश है हवा, उदास है आसमान, कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ नम होगा, होगा सिर्फ यादों का मंजर।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई,
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री नितिन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको।

सुनिए एक खुशखबरी, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियों फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर मंडलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरण के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणामलक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़े पहल तथा देशों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेसवार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबारी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबारी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर रहने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले लिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दायरे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Kiran Jha.